0: दगड़ियों, भारत मा चन्नी नीट परीक्षा का पेपर लीक मामला मा जो भी हड़ताल चन्नी जे प्रदर्शन होना छा वे मा काफी देश मा उथल पुथल हुए और ब्याली या जो हड़ताल थे वो वापस लिया ली हमारा जो भारत सरकार और
1: हर देश का शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दिया ली। तो अब देखा नई शिक्षा नीति मा क्या होंदू।

0: खेल जगत का समाचार छी, भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन जरूर छ, पर अपनो जो प्रदर्शन छ वे ते जारी नहीं रख सकनी, क्योंकि आयरलैंड में सीरीज गंवाई, फिर इंग्लैंड में जाते हैं भी पहली T20 सीरीज भी और वनडे सीरीज दुई सीरीज गंवाएं। अब जिम्बाब्वे में खेलनी छ लगी T20 सीरीज, तीन मैचों की श्रृंखला में दुई मैच तो वन अपनी झोली में डाले लेन, पर अभी एक मैच बाकी छ, देखा अब क्या ऐथर स्थिति होंगी। उम्मीद अब ठीक छ, हम ज्यादा खुशी ये छ कि वैभव सूर्यवंशी अपनी लय में आगन, तो जो एक उभरदा सितारा छन भारतीय क्रिकेट टीम का, अब ऐथर देखला कि तीसरे मैच में क्या स्थिति होंगी।
1: पुराणों का हिसाब से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना रची, तब सैरी मन ख्यात का वास्ता ई धरा को भी निर्माण करेंगे। तब दिप्तों ने ब्रह्मा जी में बोली कि हे भगवान, आपन सैरी मन ख्यात खुनता पृथ्वी लोग बने आली, परंतु हमारा वास्ता भी ई धरती लोग में कोई स्थान दयावा। तब ब्रह्मा जी ने बोली कि जम्बू द्वीप में भारत वर्ष नौ को देश हो लू, जय माँ उत्तराखंड नामक स्थान पर आप लोग विराजला। और वास्तव में आज भी उत्तराखंड की भूमि देवभूमि का नाम से जने जाती। और ये सोची सोची की कि ई भूमि में हमन जन्म ले, हम धन धन में जाने। और गर्व से अब हुई हमारा मुख बटी निकल जा कि हम उत्तराखंडी जाए।

ये कार्यक्रम आप सुनना छन आकाशवाणी एडलेट पर 103.1 FM भारतीय प्रसारण का क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम उत्तराखंडी कार्यक्रम मेरी यानी विनोद बिस्की दगड़ी। ये कार्यक्रम ते आप ऑनलाइन भी सुन सकदन www.5bbi.com.au पर।

दगड़ियों, संस्कृति यानी चीज छ कि जैकू वैल्यू आपते रुपयों का रूप में नहीं मिलू तो वन नी भी मिली चाहे तो बहुत अच्छी बात छ। पर यह जो यानी धरोहर छ ये को न तो कभी कोई समापन कर सक दू, और अगर समापन करने की कोशिश कर लू भी तो कोई न कोई आने वाली पीढ़ी में ये का पैथर काम जरूर कर लू, और तब जो बीच में रहन ऊते यत शाबाशी मिली यत गाली मिली भाई। तो ये वास्ता आप अपनी संस्कृति का वास्ता जरूर काम करो न, और ये हमारा जो कार्यक्रम चन्नु रंदु आकाशवाणी एडलेड पर समय समय पर अपनी संस्कृति ते बचौन का वास्ता अपनी अगली पीढ़ी ते कुछ बतौन का वास्ता कार्य चन्नु रंदु, तो आप भी हमारो ये मां सहयोग करो।

श्रोता, ये कार्यक्रम आप सुनना छन आकाशवाणी एडलेट पर भारतीय प्रसारण का क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम उत्तराखंडी कार्यक्रम मेरी यानी विनोद बिस्की दगड़ी। ये कार्यक्रम ते आप एथर भी ऑनलाइन सुन सकदन। यू हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहलू। वेबसाइट ची www.5bbi.com.au पर। तो ये ते कभी भी आप ट्यून कर सकतन वापस। यू हमेशा आप ते ऑनलाइन मिल जालू, बशर्ते की आपकी रुचि क्या छे। और दगड़ियों, अब समय होनु छे आपसे इजाजत लेने को। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होली। मैं विनोद बिस्सा आज्ञा दिया, फिर मिलना अगला कार्यक्रम में अच्छी जानकारी के साथ। कोई पर्व है जोल तो वे की जानकारी के बारे में आपने बतौला। नमस्कार, प्रणाम, पहला।